अंतरूप मंगल सब जाके सब थोप सुनिए घर पाके राज में राज जोग में जोगी तब में तो तीसर जस्त में भोगी त्याय त्याय भक्त है सुख पाया नानक तिस पुरख का किने।

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी की अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असां निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाने आखदे ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वडियाई है या गुरमुखां दी वडियाई जो हर मिलने वाले नूं ए दात देंदे हन। जी दान ते भगती लाएं हस्यों लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे उमलीक लाल रत्ना की प्राप्ति हुंदी है। इथो जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चिए वरतीए उन्ना ही जिमें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहुत सागर भरे आराम तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदुरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तों फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजयाब होइए वो साडे अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावें कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैं शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेब जर साहेब जायदाद होवे मित्रा दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदिया होया भी इंसान नूं किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहन दी जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नूं महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां के कितने वड्डे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथा ही जावेगा। मानुख की टेक बिरथी सब जान ते इको ही गल है देवन को एक पहवान। ओ वड्डा दाता है जेनू
अनंत काल तो अनादि काल तो सारे मंगदे आए ने ते दे के जतलांदा भी ने ओनू कुछ इवजाने च लैण दी भी लोड़ ने। पंथ दे वाली बेकसारा यार काशफ सरार, काशफ लफ्ज है फारसी दा ते सरार भी फारसी दा लफ्ज है। काशफ हुंदा है इनकशाफ करने वाला, प्रगटाण वाला, इसम फाइल। ते सरार सिर वाहद सरार जमा सिंगुलर प्लूरल एक बचन बहु बचन। सरार मीन्स बहुते भेद। जीवन दे अनेका ही पेता नू सरलता विच कर देने वाला कौन है? काशफ सरार गुरु गोबिंद सिंह, बाबा नंद लाल जी कहते। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस परमेश्वर की वड्याई करते हुए बेअंतता दसते हुए वड्डे दाते दी हमद करते हुए कहते ने तू इतना वड्डा है कि रोख रूहान की रोजी ना तारे, रोजी हिराज विलोक तराजक, रोख रूहान की रोजी ना तारे। जेड़े तेनु मनदे ने, तेरे प्रेमी ने, तेरी होंद दे धारनी ने, तस्लीम करने वाले ने, उन्हां दी ते गल छड़ दे। तेरे भगत संत भगवती महापुरुष महात्मा नेक रूहां रब प्रस्त ने, उन्हां दी ता गल की करनी है? उन्हां वल ता हे प्रभु तेरा ध्यान ख्याल होना ही है, पर तू ते एडा बेअंत है, एडा बेनियाज है। रोजी हिराज विलोक तराज कर, रोख रूहान की रोजी न टारे। रोख मीन्स रुखियां, रूहान जमा है रूह दी। तू ता रुखियां रूहां नू भी ताजगियां देना है, रुखियां रूहां नू भी सुखियां रूहां नू भी पालदा है, जिन्हां विच लचक ना होवे। लचकदार लकड़ी नू दरख्त गजा देई जांदा है, जड़ां गजा देई जांदियां ने, हरियाबल रहिंदी है ते उहदे विच लचक रहिंदी है, पर एक लकड़ी सुक जांदी है उहदे विच जीवन नहीं हुंदा, समझो कि मर गई, अकड़ गई। यह भी एक साधारण तकनी नाल वेखीए ते कमाल दी गल है, इहदे चों बड़ी रास दी गल निकलदी है। जिंदा आदमी कदी नहीं आकड़दा, उहदे विच लचक रहिंदी है। ऐन इसे तरह जिंदा दिमाग लचकदार हुंदा है, मोया दिमाग आकड़िया होया हुंदा। जो बंदा आकड़दा है होमे विच आकड़िया होया उहनू मुर्दा समझो, क्योंकि जिउंदा तां कदी आकड़दा नहीं, मुर्दा ही आकड़दा है। पर गुरु साहिब जी इत्थे कहिंदे ने सच्चे पातशाह तूं बड़ा बेअंत है, जो रुखे ने सुके ने जिन्हां च लचक नहीं ते मुनकर ने ते तों तेरी होंद तों इनकारी ने, उहनां नूं वी तूं अपने गैबी खजाने विचों वडमुलियां दातां दे ही चलिया जांदा है। हवा एक छिन एक श्वास ना आवे ते रचना मुर्दा हो जाए। धुप मट्टी ऑक्सीजन होर अनेक पदार्थ तू अपने गैबी खजाने विचों देंदा ही जाना है, जो तेतों मुनकर ने तेरिया दातां भी ले जांदे ने, तेरिया बख्शियां भी मानी जांदे ने। हे मुने परमेश्वर तेरिया नेमतां भी मानी जांदे ने, तेतों मुनकर भी ने, पर फिर भी तू उन्हां दी परवरिश करदा जाना है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने रोख रूहान की रोजी ना टार। तो इस शब्द अंदर साहिब गुरु अर्जन देव महाराज, श्री गुरु रामदास महाराज कल्याण राग दे इस शब्द अंदर फरमांदे ने कि मैनू ते उही वड्डा दाता दिसिया है, मैं हुण निश्चा कर लिया है कि दूजे पासों मंगिया पूरी नहीं पैंदी, ते नाले किसे देवी देवता हूरो मलायक फरिश्ते कोलो मंगा ते उन ते मंगके ही देना है। मंगत्या कोलो मैं क्यों मंगा, मेरे गुरु ने मैनू सोझी पवा दिती है, गुरु नानक पातशाह दे दरों मैनू सोझी मिल गई है कि परमेश्वर ही वड्डा दाता है, ते जे उनू मंग लईए ता फिर इधर उधर मुख दंत रसन कस जाए, इधर उधर मंगण दी लोड़ नहीं रह जांदी, हाजत नहीं रह जांदी, ओ सब हाजतां रवा करन वाला मालिक है। ते मैं हुण इस निश्चे ते पहुंचा हां किथों मंगा हो, कौन है इसते मुकाबले दा दाता? साचा साहिब है ते वड्डा दाता है, उसदे भंडारे अखुट ने। वाह वाह।
मुह दूजी नाही ठौर जिसका हम जावे। दुनिया विच असी वेखते हां कि एक मांगत जदों घर आ जाए सदा देवे या किसे दुकान ते कोई पैसा मंगना आ जाए, कई बार वेखण चांदा है मालिक मकान या मालिक दुकान कहंदा है माफ करो बाबा माफ करो बाबा, वो अगे चुट जांदा है। सारे बाजार च गया माफ करो बाबा ही हुंदी गई, कासा ते कचकोल खाली लिया खाली रहा। किसे प्रवीण पुरुष ने किया कि तू सारे बाजार दुकाना ती लंघे आए, बड़े बड़े इत्थे स्टोर सन, बड़िया बड़िया दुकाना सन, पुश्त दर पुश्त चलन वालिया, ते बड़े बड़े दाते भी बैठे सन उत्थे, पर तेरे कासे अंदर ते दमड़ी भी नहीं है, सिक्का भी नहीं है, गया नहीं है तू। उन्हें कहा जी गया तो सा, फिर होया की है? जदों मैं दुआ की, जदों इल्तजा की, जदों खाली ठूठा अगे किया, तो उन्हें अगे कहा माफ कर बाबा माफ कर बाबा। इस तरह मैं सारे घर अग्यों दी आया, बीबिया माइया ने खैर तक कोई नहीं पाया, अगे जाओ बाबा जी अगे जाओ, इदा कहते मैं अगे तो अगे टुरदा गया, उन्हां दे माफ करो बाबा कहण नाल टुरदा गया, बाजार मुक गया घर मुक गया, इसलिए ठूठा खा लिए। उन्हें कहा सजना जे इस तरह अगे तो अगे जावे तां इहो हाल हुंदा है, पर जे तू किते टिक के किसे एक दे परवासे उत्ते किते यकीन नाल वासिक यकीन नाल मुस्तकम इरादी नाल बह जांदा ते मैनू यकीन है तेरा ठूठा सखणा ना रहिंदा। हुंदा भी एवें है, किसे आख्या माफ करो बाबा, कम काज करके फिर आए, फिर उत्थे खलोता, तेनू क्या सी जा अगे, फिर कम लग गए, तू फिर इत्थे खलोता है, गया क्यों नहीं? वो पक्का मंगता है, ते निश्चे वाले आखन लगा मैनू अगे कोई इनविटेशन आया है जी, कोई मदाऊ कीता है किसे ने, किसे निमंत्रण दिता है, ते इत्थे अगे आ जा, तुसी तां कही जाओ अगे चल माफ कर, मैं तां हुण तेरा दर मान लिया है, तेरी दहलीज मान ली है। अंत फिर ओ कुछ ना कुछ दे के ही छुटकारा करदा है। गुरु रामदास जी कहंदे ने कि मैनू निश्चय हो गया है मैं दूजी ना ही ठौर जिस पे हम जावे जावेंगे। तो जब तक कोई मंगता टीठ होके नहीं मंगदा, जब तक कोई पूर्ण निश्चय नाल टीठ होके नहीं मंगदा, टीठ कहंदे ने तोरी जाए कढ़ी जाए मोड़ी जाए फिर उत्थे ही रहना, जब तक कोई टीठ होके नहीं मंगदा उदों तक दाता कुछ नहीं देंदा। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने परमेश्वर नूं भी ऐसा ही एक जगह आख्या टीठ शब्द अलकाप वरत्या है, आडीठ धर्म आडीठ धर्म अत टीठ करम। वाहेगुरु तूं भी अपने इरादे दा बड़ा पक्का है, ये तो मुराद है अत पुख्ता आडीठ धर्म अत टीठ करम। जाप साहब कई बारी अरदासा करते जाओ मंगते जाओ ते उन्हें जो करना है वो करन कारण समर्थ हो कर दई है। आडीठ धर्म अत टीठ करम, जब तक किसे मंगते दे विश्वासी दे डिसाइपल दे मौत के दे फिदबी दे विश्वासी मुरीद दे जग्यासु दा अत टीठ निश्चा ना हो जाए परमेश्वर उत्ते कंप्लीट सरेंडर ना हो जाए आपा समर्पण ना कर देवे उदों तक कई बारी तेनू शक्कां शकूकां दा शुभार दा ही शक होना पैंदा है शिकार होना पैंदा है। इसलिए गुरु साहिब जी आपके तजर्बाकार जिंदगी विचों कहंदे ने कि परमेश्वर दे दर नूं छड के जाना किते नहीं चाहिदा, क्योंकि मैं निश्चा धार लिया मोह दूजी

राग मल्हार बारे गुरु अमरदास जी का वचन है, मल्हार शीतल राग है, हर त्याया सांत होए। फिर ये भी हुक्म है, गुरमुख मल्हार राग जो कर है तीन तन मन शीतल होए, गुर शब्दी एक पछाणिया एको सच्चा सोए। मल्हार दा प्रभाव है सारे पासे, उत्साह दा वातावरण हो जाना। मल्हार राग विच बाणी दा मीह पैंदा दिसेगा अते जिसने भी घुट अमृत बूंद पी लई ओ निहाल हो गया। साची बाणी मीठी अमृत धार, जिन पीती तिस मोख द्वार। अमृत बचन है, इस बाणी विच बहुते शब्द मीह अते बबीहे दे संबंधां नूं ही दर्शाउंदे हन। ये भारतीय संगीत दा बड़ा प्रसिद्ध राग है, ना केवल संगीतकारां विच सगो जन साधारण लोकां विच बहुत प्रिय है। मल्हार एक मौसमी राग है, भारत दी भूगोलिक स्थिति अनुसार इस राग दा गायन सावन भादरों दे महीनियां विच वधेरे कीता जांदा है। बरखा रुत विच यह हर समय गाया जा सकता है, उंज यह रात दे तीजे पहर गाया जांदा है। इस राग विच दोनों निषाद लगते हैं अते बाकी सारे स्वर शुद्ध। इसका वादी मध्यम अते समाधी शरज है। डॉक्टर अजीत सिंह जी पेंटल पासों ये शब्द सरवण करो, बरस सरस आग्या अते दूजे शब्द का मनोहर कीर्तन राग मल्हार विच ही कर रहे हैं भाई नरेंद्र सिंह जी। पवित्र शब्द है राम राम बोल बोल खोजते वड़ भागी।

ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी। जिवें उह बुला रहा है दास बोल रहा है, किसे नूं प्रतख किधरे किधरे प्राप्ति होई है उहदा जिक्र सुन के रंग लाए। रंगियां दा जिक्र कुदरती सामने आ जे बोलिया जांदा है, उहदा भाव लैणा किते सतगुरु कृपा कर। इहो जिहा प्यार प्रेम सानू ही हो। उदास बेनती कर रहा सी, शब्द दर्शन, सुपन दर्शन, प्रतख दर्शन, चौथे ने चित्र दर्शन। अमरीका का शहर हो गुरु रामदास के घर की चित्र लगा होनू एक मिनट वेखी जाओ तो की याद आएगा, थोड़ी याद पहुंच जाएगी गुरु रामदास के घर। आखो सतनाम, चित्र च भी ताकत। ए भी ताकत, भावें किसी होर धर्म वांग चित्र के मुख से असी कोई लड्डू बर्फी ये किरिया नहीं करनी। केवल चित्र लगा होवे साईं भी याद दवाउंदा है। अजायब घर क्यों बने कि इन्हां चित्रां नूं वेख के सानूं अपने पिता पुरखां दीआं कुरबानियां याद आउण ते होर रंग लगे। इन्हां च ताकत। बाबे टल दे गुरुद्वारे जाओ ते कितने इतिहासक चित्र अंदर

तेरी ये जवानी को मला जावेगी, थोड़े दिन ने बंदगी कर ले, क्यों के पता नहीं मौत ने किड़े वेले आना।

जे पूछिए भाई तू क्यों रोना है, ते रोन वाला कहेगा मेरा कुछ सज्जन मेरा प्यारा सौंगे है, टिकया उठ पवेगा रोन की केड़ी लोड़ है। ता जवाब दिता उस सुता एहो जी जगह है जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया, सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान, जीरान कहते ने कब्रस्तान, कब्रस्तान जाके सौ गए ने जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया। ऐ भाई एक दिन सारिया ने उत्थे सोना है, फिर क्यों ना एहो जे काम करिए।

हमारी जेबा एक रंग हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जमे ईरान हर तुम बड़ अगम अथाह।

कमल गुण कही है तेरे गुण बहुते मैं एक ना जाने कमल गुण कही है जेहबा एक

निर्मल निर्मल सूर्या, निर्मल निर्मल सूर्या, सूचो सूचा सूचो सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, अंत न अंता।

रह जावांगा, तेरे हथों पानी लेके मैं भी नहीं पीवांगा। इन्हें हाथ जोड़ के भुलां बख्शाइया। सतगुरु मैं मापियां दी सेवा करया करांगा। पता नहीं सी, अनजाने विच भुल हो गई। अज तू बाद तुहाडे नाल बचन करदा हां, मैं अपने माता पिता दी सेवा करया करांगा। सतगुरां ने असीस दिती, गुरसिखा सेवा करेगा ते गुरु नानक महाराज तेरी झोली खुशियां दे नाल भर देंगे। सत्संगियो, जे परमात्मा दे प्यार दी कहानी दो शब्दों विच आखनी होवे ना, ते मां बाप आख दे उस निरंकार दे प्यार दी कहानी पूरी हो जांदी है। मां बाप आख दे जे इको शब्द विच उस रब दे प्यार दी कहानी कहनी होवे, ते इको ही शब्द कहना है, ते मां आख दे ते उस रब दे प्यार दी व्याख्या पूरी हो जाती है। अपढ़ो बाणी, सतगुरां ने जगह जगह एक नहीं अनेकां शब्द उचारे ने उस निरंकार दे प्यार दी कहानी माता पिता दियां उदाहरणां दे के दसी है। किन्ने ही शब्दां विच तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, जां होर किन्ने शब्द पढ़ लो, हर जी माता, हर जी पिता। सत्संगियो, उस रब दा सवा मिलदा है माता पिता नाल। पर किड्डा भी निकम्मा होवे, मापे फिर गले नाल ला लेंदे ने। कहंदे ने ना, पुत्र कुपुत्र हो जांदे ने, मापे कदी कुमापे नहीं होंदे। हिंदुस्तान दी धरती उपर अनेकां ही भगत होए ने, पर एक भगत एहो जिहा होया है जिन्हें भगती नहीं कीती, लोक उहनूं फिर भी भगत कहिंदे ने। तको सत्संगियो, भगती नहीं कीती, लोक उहनूं फिर भी भगत कहिंदे ने। भी क्यों फिर भगत कहिंदे ने? क्योंकि उहने सारी जिंदगी अपने मापियां दी सेवा रज के कीती। भई ओ कौन है? भाई गुरदास जी बाणी विच, होवे सरबण विरला कोई, ताई आखदे ने मापे, ऐ रब्बा सरबण पुत्र देवी, उदाहरणा देंदे ने। मां बाप अंधे ने, बुजुर्ग ने, सत्संगियो कंधिया ते चुकी फिरदा है, कोई गल नहीं। मेरे मापिया दियां अखां नहीं, मेरी मां मेरिया अखां नाल देख लवेगी, मेरा बापू मेरिया अखां नाल तक लवेगा। कोई नहीं बापू, मां तेरा जी करदा है ना, यात्रा ते जाण नूं कोई धार्मिक स्थान चकण वास्ते, ते मैं तैनू कंधिया ते चुक के लै जावांगा। अंधे माता पिता नूं कंधियां ते चुकी फिरदा है, ते ताईओ लोकी चंगे पुत्रां दियां उदाहरणां देंदे ने। अरदास है, ऐ सतगुरु महाराज बख्शिश करो, साडी जिंदगी दा भी यह दस्तूर बन जावे, यह मर्यादा बन जावे, असी भी अपने मापियां दी सेवा करिए, असी भी अपने बजुर्गां दी सेवा संभाल करिए। क्योंकि जिन्ना चिर असी अपने मापियां दी संभाल, बुजुर्गां दी सेवा नहीं करांगे, गुरु नानक दे दरबार विच भी साडी सेवा प्रवान कोई जी नहीं होनी, प्रवान होनी नहीं। जदों असी सेवा संभाल करांगे, ये दस्तूर बन जाएगा, फिर गुरु नानक महाराज भी साडे ते खुश होणगे, लोग भी

0: देख है क्या गुण तेरे साथ माली शुरुआत है मैं मूर्ख की केत की बात है कोट अपराधी दरिया रे गुरु नानक सुनिया पे किया
1: से फिर गर्वास ना पड़े।

आखिरी पंक्ति कह के घमल जाज का। हर बेअंत होमित कर वरनो क्या जानो कैसुर करूं बेनती सतगुर अप